अवार्थ दासबोध निरूपणकार पद्माकर देशपांडे भाग 224 दशक 17 तनु चतुष्टय नाम समास जय जय रघुवीर समर्थ स्थूल सूक्ष्म कारण महाकार

0: जी मैं एक सिटी विशेषज्ञ हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है कि इंसान के पास हर मौके के लिए सिटी है, जैसे पिक्चर हॉल में सिटी, बिना चटकनी के बाथरूम में नहाते हुए सिटी, ओ जी खूबसूरत चेहरा सामने हो तो बजी सिटी होए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर खुला हो तो कैसे बजेगी सिटी? ओ जी इतनी ठंड में आपकी सिटी नहीं बैंड बज जाएगी। हाँ
1: कैल्विनेटर, द कूलेस्ट वन।

में किसके वास्ते हूँ मैं, ना जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, ना जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानियां ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किस